0: नमस्कार चेन्नई, मैं हूं आपकी आरजे श्रेया अग्रवाल और आप हमारे साथ सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8। आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड। और आज हम आपसे धूम्रपान के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सुनने वाले हैं प्रविता, जो आपको धूम्रपान के बारे में स्पीच देगी।
1: धूम्रपान के दोष। क्या आपने कभी सोचा है कि तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन करते समय हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? बहुत से लोगों को धूम्रपान सेवन की लत पड़ जाती है और कई बार इसके घातक दुष्परिणामों से अनजान व्यक्ति इसका सेवन करते जाते हैं और अंत में या तो घातक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं या अकाल मृत्यु को प्राप्त। धूम्रपान सेवन चाहे किसी भी तरीके से किया जाए, यथा तंबाकू के रूप में, पाउच, गुटखा, मंजन अथवा अन्य किसी भी रूप में, ये हमेशा घातक प्रभाव ही डालता है। इनमें से सिगरेट आदि धूम्रपान की विधियों से तो न केवल धूम्रपान करने वाला ही पीड़ित होता है, बल्कि पास वाले लोगों पर भी इस धुएं का दुष्प्रभाव पड़ता है। सिगरेट के धुएं में विभिन्न हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जैसे कार्सिनोजन, कोशिक उत्तेजित एवं विष, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, निकोटिन इत्यादि। ये सभी रसायन शरीर के सामान्य संवेदी तंत्र, रक्तचाप, हृदय दर, श्वसन दर आदि को प्रभावित करते हैं। सामान्य लोगों की अपेक्षा सिगरेट पीने वाले लोगों में हृदयाघात की कई गुना ज्यादा संभावनाएं होती है। तंबाकू चबाने वाले लोगों को मुंह के व गले के कैंसर की अत्यधिक आकांक्षा रहती है। कई बार रोगी द्वारा बोलना एवं मुंह खोलना भी असंभव हो जाता है और आदमी के लिए कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है। गर्भवती स्त्रियों द्वारा धूम्रपान के कारण गर्भपात, मृत शिशु को जन्म देना, कमजोर व विकलांग बच्चों को जन्म जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिला है। यही नहीं, धूम्रपान करने वाली महिलाओं के बच्चों का बाद में भी उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता। इन सब के अलावा ऐसे लोगों में पेप्टिक अल्सर, कंठ कैंसर, अग्नाशय कैंसर की आशंका भी बढ़ जाती है। पानी पित्त के हते, धुवा सुनी के जीव, हेतु में हिंसा गनी, क्या करे पीवे पीव। इसलिए धूम्रपान अथवा किसी भी प्रकार तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को चाहिए कि वे अपनी इस आदत से शीघ्र मुक्त हो जाए। युवा वर्ग को चाहिए कि वह इस टेस्ट सिंबल न मानकर गले पड़ती मौत को दूर भगाए। तो क्या सोचना आपने, आज अभी बल्कि अभी से ये कसम खाइए कि आज से धूम्रपान बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। आपके खातिर, आपके बच्चों के खातिर, समाज के खातिर, देश के खातिर, इंसानियत के खातिर। धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रविता, आशा है कि आप सबको इस भाषण से प्रेरणा मिली होगी। अब हमारे सामने खुशबू है, जो आप सबको एक पोयम पढ़ के सुनाएगी।
2: मैं खुशबू अब आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। फिर एक सिगरेट जला रहा हूँ, फिर एक तीली बुझा रहा हूँ, तेरी नजर में मैं बिगड़ रहा हूँ, मैं तो तेरे वादे भुला रहा हूँ। समझना मत इनको मेरी आदत, मैं तो बस एक दर्द को दूसरे से दबा रहा हूँ। ये तो तेरी यादों के सिलसिले हैं, मैं तेरी यादें जला रहा हूँ। मैं घायल इतना टूट चुका हूँ कि गम के किस्से सुना रहा हूँ। अगर तुम्हें भी गम है तो पास आओ, पहली और आखिरी बार गले लगाओ। है मेरी आंखें तो आज नम, मगर मैं सबको हंसा रहा हूँ। खोकर अपनी जिंदगी, फिर एक सिगरेट जला रहा हूँ, फिर एक सिगरेट जला रहा हूँ।
0: वाह खुशबू, क्या कविता थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अपनी जिंदगी की अहमियत समझ में आ गई होगी। अब वंशिका आपके सामने बटर पनीर और खमन की रेसिपी लेके आई है।
3: मैं वंशिका आज आपके सामने खाने की कुछ प्रक्रिया लेके आई हूँ। बटर पनीर मसाला। सामग्रियाँ: 2 प्याज, 2 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च, काजू, पनीर, टमाटर का सॉस, चाट मसाला, मक्खन, धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी। विधि: प्याज और टमाटर को बारीक काट ले, कढ़ाई में कुछ मक्खन डाल ले, उसमें कटे हुए प्याज और टमाटर को तल ले। उसमें धनिया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना ले। काजू को थोड़ी देर दूध में भिगो दे। उसके बाद ये सब मिला दे और इसे गैस पे सिकने दे। 10 मिनट के बाद इसमें टमाटर का सॉस, चाट मसाला, थोड़ा सा दूध डालकर हिलाए और सीजने दे। पनीर को काट कर उसमें फ्राई कर ले और ये आपके पनीर बटर मसाला की सब्जी तैयार। अगली रेसिपी है खमन। सामग्रियां: बेसन 1.5 कप, पानी 1/4 कटोरी, नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, इनो 1 पैकेट। विधि: बेसन ले ले, उसमें पानी, नींबू का शत, नमक डालकर उसे हिला ले। अंत में उसमें इनो का पैकेट डालकर उसे हिलाए ताकि गोल फूल जाएगा। कुकर के अंदर 1 ग्लास पानी डालें और उसे गैस पे रख दे। बर्तन में खमन का घोल डालने के बाद उसे 5 मिनट तक कुकर के अंदर रख दे ताकि वह सिक जाए। उसके बाद खमन को बाहर निकाल के उस पर राई, केरी पत्ता, कोतमली, तिली का बगार डाल दे और ये खमन की रेसिपी तैयार।
0: वाह वंशिका, ये सुनकर तो मेरे मुंह में ही पानी आ गया। आशा करती हूँ कि सुनने वालों को भी ये पसंद आया हो। अब हमारे सामने सलोनी है जो हमें शायरी सुनाएगी और जिंदगी की कुछ हकीकत हमें बताएगी।
4: नमस्ते, मेरा नाम है सलोनी। जिंदगी की हर एक उड़ान बाकी है, हर मोड़ पर एक इम्तिहान बाकी है। अभी तो सिर्फ आप ही परेशान है मुझसे, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के, जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है।
0: वाह वाह सलोनी, आपकी शायरियों ने तो मुझे और खुश कर दिया। ये कहते हुए मैं आप सब से अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप यूं ही इस बारिश के मौसम में लुफ्त उठाते रहें और खुश रहें। मेरा नाम श्रेया अग्रवाल और आप हमारे साथ सुन रहे थे MOP रेडियो 107.8, आर रेडियो